नन्बे काशी वलट दिन नन्बे मनुष्य कम मिनी सुनी काशी वासी अति अयलंग बहुम ही गई गन्नट ने मनुष्य कम मिनी सुनी काशी वलट गन्नत्ते काशी वलट दिन नन्बे मनुष्य कम मिनी सुनी काशी वासी अति अयलंग बहुम ही गई गन्नट ने मनुष्य कम।